0: As Eid al-Adha draws near, buyers are struggling to purchase sacrificial animals at the cattle market set up in Karachi, Pakistan, due to high prices. Thousands of buyers visit the market daily to purchase sacrificial animals prior to Eid al-Adha. Some of them have complained that the prices this year are exorbitant. Sellers say the increase in prices is due to increased costs for transportation, space, fodder, labor, and other expenses.
1: देखिए ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि 1200 से ज्यादा एकड़ के ऊपर लगाई जाती है और इस मवेशी मंडी में 3 लाख के करीब जानवर जो हैं वो अनलोड होते हैं मुल्क के मुख्तलिफ अजला से और आज की अगर बात की जाए अब चंद रोज बाकी हैं ईद उल अज़हा में अबाउट 70-80% जानवर जो है वो सेल आउट हो चुका है.
0: Karachi's cattle market spans over 1,000 acres and accommodates more than 300,000 animals, according to Saqib Alam, a market spokesman. Eid al-Adha will be observed in Pakistan on Wednesday, May 27th.

0: एकड़ के ऊपर लगाई जाती है और इस मवेशी मंडी में 3 लाख के करीब जानवर जो हैं वो अनलोड होते हैं मुल्क के मुख्तलिफ अजला से। और आज की अगर बात की जाए, अब चंद रोज़ बाकी हैं ईद उल अज़हा में, अबाउट 70-80% जानवर जो है वो सेल आउट हो चुका है।
1: Karachi's cattle market spans over 1,000 acres and accommodates more than 300,000 animals, according to Saqib Alam, a market spokesman. Eid al-Adha will be observed in Pakistan on Wednesday, May 27th.